स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगी दर पाछा काल दी गति अगात कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब के विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज के ऊपर, उथे बैठ के काल का कौतक वेख के ये बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यो पानी पीन लगता है तो इसते मुख विच मच्छी फस जाती है, दम रुक गया। ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यो इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तो वो भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे, जल कहां डूंगे जल विच रहन वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भई तेरा समा आ गया। थल कहां तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। ज्यो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू डसिया, शिकारी नू डसिया, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उस वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न दे पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

कैसा मरना हो, जेकर साहब मनो ना विसरे तां सहला मरना हो। हजूर कहंदे न मरना सच है, जीवना झूठ है। ऐ मनुख मरने नाल तां जगत डरदा है, गुरमुखां नूं कहदा भई डर है। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। जिन्हां ने आके श्वास श्वास भजन कीता सिमरन कीता, वो तां बाजी जीती बैठे हन, वो तां पुग चुके हन, वो तां जीवन मुक्त हन, उन्हां नूं मरने तो डर नहीं। गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे हन, जिहड़ा हुक्म बुझ गया है गुरु दा, संसार ते आउण दा जिन्हूं पता लग गया भई मैं क्यों आया, ते फिर उसने सेवा सिमरन परपकारी जीवन बिता दिता है। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म है बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। ओ सदा जीवदे हन जेड़े गुरु दे हुक्म विच निर्मल पाओ विच अपना जीवन बतीत करदे हन। भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन कि गुरमुख हमेशा जीते हैं, मरते कभी नहीं वो, जिनकी जबां पे हर दम सतनाम वाहिगुरु है। जो हर वेले ईश्वर भगती विच जुड़े हुए हन, जो हर वेले अपने मालक दे चरणा विच जुड़ के जपदे हन श्री वाहिगुरु, फिर भाई उन्हां नूं उन्हां दा आउणा भी सफल है, उन्हां दा संसार तो जाना भी धनता दे योग है। ओ सदा जीउंदे हन, नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुर मंत। तो निरंकार ने जितने श्वास दिते हन भाई, ओ तां उतने ही रहने हन। जे भले कर्म करिए, भले कर्म करन नाल ए साडे श्वास घट खर्च होंदे हन, भोग विलास विछियां विच दुगने श्वास खर्च हो जांदे हन, जिस करके उम्रा घट जांदी है। ते जे सतपुरशां दी संगत रहे, गुरु की संगत विच मन करके भी तन करके जाग के नाम दा अमृत पींदे रहिए, तां ए श्वास जमा रहंदे हन, घट खर्च होंदे हन। फिर जिस तरह माया बैंक विच पई होवे तां विहाज नाल मिलदा है, इसे तरह वधदे रहिंदे हन जदों चंगे कर्म कोई करदा है। उम्र उतनी हुंदी है, श्वास उतने ही हन तेरे खर्च करन विच। कई मनुख कुकर्म करके अपने श्वासां नूं छेती जाया कर जांदे हन, कई एक एक श्वास नूं जप जप के सफल कर लैंदे हन। उच्चारण करो श्री वाहे, पर श्वास उतने ही हन जितने निरंकार ने दिते हन। और क्या जानना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, ये कोई पता नहीं है। कारण बनदा ये कारण निरंकार नूं पता है। ब्यास जी दे पास एक बच्चा सेवा करया करदा सी, आके ते ब्यास जी नूं बड़ा चंगा लग्या, ते जदों उसदे मस्तक दियां लकीरां देखियां ना, ते समझ गए भाई इहदी ते उम्र ही थोड़ी है, पर हर

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

गुरमुख पैर सकार थे, गुरमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरु सिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे। बंद खल

मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस मह पाग्यो।

यही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करेंगे, सीधे रस्ते आ जाएंगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता, अनेकां नूं तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। यही लोग तेरे चरण पूजनगे, तेनूं 36 प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नूं देव दूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तिन मिलदे हन। ते मर्दाने दा रंग पीला पैण लगा, एदियां भयानक शकलां। महाराज अज नहीं बचांगे, ए तां बड़े भयानक मनुख जापदे हन, बड़े भयानक राक्षस हन। गुरु साहब कहण लगे तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नूं बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, आज इना देवां नूं भी देहां नूं भी देवत्यां दी नगरी बना देता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेखे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

0: अंगन की ते कुमारे गोटी जी पीढ़ी विचारिया
1: क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक ग्राम हर के गुण अदम अथार हम क्यों कर जाने हर तुम बड़ अदम अथार।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

मस्तं भगनंत शैलं मस्तं भगनंत शैलं तर्दमंत्रंत पपीलक साग्रं लघंत पिंगं साग्रं लघंत पिंगं तं प्रकाश अंधक है साध संगेण शिवरंत गोविंद साध संगेण शिवरंत।

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां की पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र की पूजा उचारदे ने, उस शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र की पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पोत का झलहे तहती, नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बान गंगा तरंगी, तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी, तेरे शाम है मोक्ष दाती।

खंडो खड़ग, अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुप तवर आते अस्कृपान खंडो खड़ग, तुमक तवर अर्पी सैफ सरोही सहरी, यही हमारे पीर सैफ सरोही सहरी, यही हमारे पीर तू ही सैथी, तू ही तवर तलवार,

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरंग

नगारे वजदे जोधे गजदे ते साध संगत जी जंग हो रहा साहब कहते नागरतन जागरतन भागरतन बाजे नागरतन जागरतन भागरतन बाजे सागरतन गाजी महागाजी का

0: भाई नंदलाल जी।
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर सर धैले, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परापत होए।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इसनु ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निवकी तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उच्चार नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ये जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे कि खालसे की फतेह चार ऊंट विच होएगी चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

सास विरास भगती करने वाला अज अमृत वेले उठिया, इशनान कीता है, क्योंकि नेत्रा तो हीन है। जो सैर करन निकलिया ते रस्ता ही गुरु दरबार दा भुल गया। बाणी पढ़दिया ने